0: को इन्टरनेट गेट कनेक्टेड स्टे कनेक्टेड।
1: नयाँ जडानको लागि सम्पर्क 9028-13424 र 9855-14175।
2: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।
3: शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।
4: यति बेला बिहानको ठिक 8 बज्यो।

वो जाना चाहता है और वो चला जाएगा, पर बात तो वही रहेगी ना कि मैं उसे जाने दूं या बस थोड़ा सा और इंतजार।